0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

दोस्तों, ये ख्याल तो जरूर आया होगा ना कि यार जिंदगी में ना रिटायरमेंट जल्दी ले लेनी चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सिंपली आफरीन ऑन मीठी मिर्ची और 89.6 मिर्ची वन। और ऐसा कई बार होता है ना कि आप काम के मारे इतने थक जाते हो और सोचते हो कि यार इतना पैसा कमा ले कि हम जल्दी से रिटायर हो जाए और उसके बाद में आराम फरमाएंगे। लेकिन कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या? देखिए, मेरा मानना कुछ ऐसा है कि जीने की वजह, हेल्दी रहने की वजह बिजी रहने से आती है। जब हम दिन के एंड में शुक्र करते हैं आज के दिन की, तब हमेशा इस ख्याल के साथ में हमें सोचना चाहिए कि कल क्या। कल के जीने की वजह सोच कर ना हमें आज के दिन का अंत करना चाहिए। इस तरीके से आपका दिमाग भी हेल्दी रहता है और आपकी बॉडी भी। और वैसे कहना तो यही है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए मेरे ख्याल में बी बिजी, बी हेल्दी और अपनी जिंदगी को हर दिन एक नए वजह के साथ शुरुआत कीजिएगा। फिलहाल शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर विद मी, दैट इज सिंपली आफरीन विद अ सिंपल सा ख्याल ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा, बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर, तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: ये पगला।
6: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल।
7: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।
8: दिस इज विनोद राठौड़ एंड वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार।
9: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
11: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
12: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
14: 89.6
4: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मैं बंधुओं, जानते हो एयरपोर्ट पर दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बोर्डिंग गेट ढूंढते हैं और दूसरे जो बोर्डिंग गेट से पहले ड्यूटी फ्री ढूंढते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर देखो आप ना सेकंड कैटेगरी में आते हो, देन दिस न्यूज इज डेफिनेटली फॉर यू।
0: क्या खबर कतर?
1: खबर ऐसी है दैट कतर ड्यूटी फ्री ने 2026 फ्रंटियर अवार्ड्स में एयरपोर्ट रिटेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, और एक बार नहीं फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर है कतर ड्यूटी फ्री ने ये टाइटल अपने नाम किया है। साथ ही एक और अवार्ड मिला है, बेस्ट स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट हाइब्रिड एंड FMB रिसेंटली ओपन्ड लैंडकॉम कैफे देला रोज के लिए भी। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये ब्यूटी एक्सपीरियंस और कैफे को एक ही स्पेस में कंबाइन करता है, एंड रिपोर्टेडली ये दुनिया का फर्स्ट एयरपोर्ट ब्यूटी कैफे है। हाउ इंटरेस्टिंग, वाओ। और पिछले 12 महीने में HIA पर कतर ड्यूटी फ्री ने 15 नए रिटेल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट का फर्स्ट POP मार्ट, दैट इज द पॉप मार्ट। तो अगली बार हमद इंटरनेशनल से फ्लाइट हो और कोई कहे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट क्यों जाना है, तो अब आपको इसकी वजह तो मिल गई है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हाँ वैसे धीरे धीरे से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव तो आ रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और धीरे धीरे हमारे जो दिन है वो अच्छे दिन की तरफ जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल आंकड़ों में तो वेदर ये कहता है 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं अभी थोड़ी हमारे साथ ना गेम्स खेल रही है। कहीं ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा वेदर हो रहा है, शाम के वक्त हमें गर्मी तो महसूस नहीं हो रही है लेकिन पसीने थोड़े से निकल रहे हैं ना, ह्यूमिडिटी है जो पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, आप हमारे कतर के इतने अच्छे अच्छे आउटडोर लोकेशंस हैं जहाँ पर एसी मौजूद है, अब भले ही वो कतारा हो गया या फिर आप प्लेस वेंडम का वो फाउंटेन वाले एरिया में जाइए या लुसेल में जाइए, यू विल फाइंड सो मैनी प्लेसेस इन कतर जहाँ आपको प्रॉपर एसी वाला मिलेगा आउटडोर में। तो बस दिस इज अ टाइम जहां आप ये सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। मीनवाइल आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। हार्डी संधू की आवाज में ये आग लगाना। बिजली बिजली बिजली, भाई बिजली का तो पता नहीं, थोड़ी सी बारिश के बूंदे ही गिर जाए हमारे कतर में, क्या बोलते हो? सुनते रहेगा ऑन मिर्ची हॉट।
3: ओ चलती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
9: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
10: बार बार
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
13: ओ कुड़ियो गुड़ की

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
5: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था.
4: दोनों.
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
6: तो सिर्फ चोरे करें.
7: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो मुझे तो इस चीज का ना ऑब्सेशन है। वेल देखो तो ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज का ऐसा जुनून और ऑब्सेशन होना इतनी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इस चीज का ना बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। एंड वेल आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवल का ऑब्सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अगर आप मेरी बात से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो ना कि यार एक ट्रिप खत्म नहीं हुआ कि हम दूसरे की प्लानिंग करने लग जाते हैं और बस उसी में हमारे कुछ महीने निकल जाते हैं इस खुशी में कि हम 2 महीने बाद 6 महीने बाद 8 महीने बाद भले ही ये ट्रिप पे जाने वाले हैं, एंड देन जैसे ही वो ट्रिप चलती रहती है और उसी में आप दूसरे ट्रिप की प्लान करने लगते हैं। ऐसा होता है कि आपके साथ, मेरे साथ तो होता है। तो अब समझ लो कि भाई ट्रैवल का कीड़ा कितना बड़ा है मुझ में। और कहीं ना मुझे ये लगता है कि जो आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से या फिर एक लर्निंग के हिसाब से जो ट्रैवल सिखा सकती है ना, वो दुनिया की कोई भी कॉलेज, कोई भी क्लासरूम के अंदर आपको वो नहीं सीखने मिलेगा। आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, 4 अलग किस्म के लोगों से मिलते हो, वहाँ के लोकल किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंड आई मीन इट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट सिनेरियो। आपका जो माइंड जो है वो इतना ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी मोड में चला जाता है, विच रियली गिव्स यू अ लॉट ऑफ लेसन्स। अब आफरीन इतना ट्रैवल के बारे में क्यों बात कर रही है आज? सो वेल इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अब से थोड़ी देर में मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं सतगुरु ट्रैवल के डायरेक्टर संतोष, एंड टुडे इज गोना बी ऑल अबाउट ट्रैवल, माई फेवरेट टॉपिक। वैसे तो मुझे बहाने इतने मिलते नहीं है, मौके इतने मिलते नहीं है ट्रैवल के बारे में बात करने के लिए, आज हम खूब गप्पे लगाएंगे। सो इफ यू आर समवन हु लव्स ट्रैवलिंग, यू शुड डेफिनेटली स्टे ट्यून टू अस, यानी सिंपली आफरीन के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: देखिए वैसे तो आफरीन दो चीजों के बारे में बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, एक तो है बॉलीवुड और दूसरा रहा ट्रैवल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बॉलीवुड की बातें तो मैं हर रोज करती हूँ, लेकिन ट्रैवल के बारे में बात करने का मौका ना मुझे बहुत कम ही मिलता है, और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर संतोष, डायरेक्टर ऑफ सदगुरु ट्रैवल, और इनके साथ में तो इतनी बातें होने वाली है, लेकिन पहले इनके बारे में तो थोड़ा जान ले। वेलकम टू द स्टूडियो मिस्टर संतोष।
1: हाय आफरीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
0: जी एंड मिस्टर संतोष, आपके बारे में हम अभी बात ही कर रहे थे, आपका वास्ट एक्सपीरियंस, थोड़ा सा आप प्लीज बैकग्राउंड शेयर कीजिए हमारे लिसनर्स के साथ।
1: ओके, सो आई एम हम्बली अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सदगुरु ग्रुप और सदगुरु ट्रैवल। इट्स गुड 29 ईयर्स एंड यू नो द एक्सपीरियंस हैज बीन सो अमेजिंग दैट इट पास्ड इन अ ब्लिंक एंड आई फील ब्लेस्ड।
0: फैंटास्टिक। एंड आपको बता दें लिसनर्स सारे कि सदगुरु ट्रैवल्स वही है जो हम सभी को भी घुमाता है। वेल, मिर्ची टर्मिनल जो हम काफी सालों से सदगुरु ट्रैवल के साथ कर रहे हैं, एंड नाउ यू नो कि सदगुरु ट्रैवल के साथ फिर से हम इस बार मिर्ची टर्मिनल करने वाले हैं, उसके बारे में भी बातें करेंगे। आप कैसे कान खड़े हो गए, आपके कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या है, अरे ये सब तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा घूमना फिरना ये सारी चीजें बात करेंगे मिस्टर संतोष के साथ। राइट ऑन मिर्ची, it's hot.

0: song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga.
2: Mirchi, murga. Hello.
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे हैं।
3: राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: Hi, this is Anuradha Podwal.
8: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।
9: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: भूल से पर्दा कीजिए।
11: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
12: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
13: खट खट,
14: कौन है?
13: अज्जू।
14: अज्जू कौन?
13: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
14: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: चलिए आपको मैं आज सैर करवाती हूँ। अब आप कहोगे आफरीन हम गाड़ी में हैं, हम दोहा की सैर कर ही रहे हैं। अरे थोड़ा सा दोहा कतर के बाहर निकलो, बाहर की सैर करवाती हूँ राइट नाउ रेडियो के थ्रू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड मेरे साथ है मिस्टर संतोष, डायरेक्टर ऑफ सदगुरु ट्रैवल, जो हमें सैर करवाने वाले हैं। और अक्सर हम जब ट्रैवल और टूरिज्म की बातें करते हैं, आई थिंक सो मेन स्ट्रीम तो यूरोप होता है ज्यादातर, ऑल थैंक्स टू यश जी, और जिस तरह से उन्होंने हमें स्विट्जरलैंड इतना ज्यादा बॉलीवुड की मूवीज के थ्रू हमें सेल किया है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है माय फ्रेंड्स, और बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, और वो भी हमारे अगल बगल, राइट मिस्टर संतोष? सो मिस्टर संतोष, आप कौन सी ऐसी जगह पर हाईलाइट करना चाहोगे?
1: सो इट्स बेसिकली यू नो द डेस्टिनेशन जो हमारे आसपास ही हैं, व्हिच आर रीचेबल, वेरी फ्रेंडली, एंड दे हैव एवरीथिंग यू नो दैट इज रिक्वायर्ड, but it is kai bar you know all you need is an attention or a little bit of study. So I am mostly talking about few Asian beauties.
0: Okay.
1: Predominantly Uzbekistan.
0: Oh wow.
1: Okay. Then you are you know our own you know the three brothers what we say or three cousins, which is Sri Lanka, Nepal and our own India.
0: Okay.
1: So again in India as a destination has got a lot to offer apart from the mainstream as you said, right from you know from the northeast to Lakshadweep to Kashmir and obviously Sri Lanka, which is slowly become a talk of the town.
0: Bilkul.
1: Everyone is now curious about Sri Lanka in recent years, and Nepal obviously has got the both the aspect, one is the spiritual, another is the fun part or even the adventurous part. And make no mistake, Uzbekistan, I have been to Uzbekistan multiple times.
0: Love.
1: I never imagined that the kind of love and warmth I will get. I never felt out of you know out of place. The people were so warm. The food was amazing.
0: Nice.
1: And you know I had a ball. I mean there are few things that you can only experience.
0: बिल्कुल सही बात की आपने, और ट्रैवल तो ऐसी चीज है विच इज वर्थ इन्वेस्टिंग। मतलब अगर आपको अपना वक्त, अपने पैसे और अपने आप पर कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो वो ट्रैवल के जरिए होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने मिलता है। फिलहाल हम बात करेंगे और भी डेस्टिनेशन के बारे में, लेकिन व्हाट कॉट माय अटेंशन वाज मिस्टर संतोष उज्बेकिस्तान, इसके बारे में मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहती हूँ थोड़ी देर में। यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज सिंपली आफरीन एंड मिस्टर संतोष फ्रॉम सदगुरु ट्रैवल, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो कहीं ट्रैवल करना होता है ना तो पहले हम फ्लाइट्स और डेस्टिनेशन नहीं चेक करते, पहले हम ये देखते हैं भाई वीजा कहाँ का फ्री है या फिर आसान है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मजे की बात पता है क्या, जब से हम कतर में हैं, मैं कतर में आई हूँ, मुझे कतर एक ऐसी डेस्टिनेशन लगती है जो पूरे ग्लोब में ना ऐसे सेंट्रल है और कहीं पर भी जाना ना काफी आसान लगता है, टाइम बचता है। और कतर में रहते हुए फायदा तो ये भी रहता है कि कहीं कहीं जगह का हमें वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है या ई वीजा होता है। तो बस आपका नेक्स्ट ट्रैवल प्लान शायद हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेंगे, हम यानी मी एंड मिस्टर संतोष फ्रॉम सदगुरु ट्रैवल। और हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले ना एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे थे विच एक्चुअली कॉट माई अटेंशन एंड दैट वाज उज़्बेकिस्तान। और मजे की बात यह है इसका वीजा अब उसका क्या है आप बताइए, और उज़्बेकिस्तान के बारे में आई वांट टू नो एवरीथिंग।
2: आई मीन द वीजा इज एज इजी एज 1 2 3।
1: वाओ,
2: बिकॉज़ यू नो फॉर एनी क्यूआईडी होल्डर्स और इवन अदर इट इज यू कैन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक वीजा एंड व्हिच इज वेरी इजी टू ऑब्टेन, इट कैन कम विद इन फ्यू डेज, इट्स वेरी इजी बेसिकली। एंड that place, I think the best time is to travel to Uzbekistan is from October onwards, because now it is the winter time, so you will have Tashkent, obviously the capital city. Then you have the cultural capital, which is Samarkand, followed by the amazing Bukhara and Khiva, which has got his own charm and historical place. And make no mistake, they have got, it is equally modern. So you have got everything you can desire for in terms of restaurants, in terms of cafes, bars, pubs, nightlife. So you want, you name it, you have it.
1: Lovely.
2: Yeah. And you have all the branded 5-star hotels in the city.
1: Lovely. आप इतनी बार उज़्बेकिस्तान गए हैं, so मैं अगर आपसे पूछना चाहूँगी एक ऐसी spot वहाँ पर, number one जो आपके ज़हन में आती है।
2: There is a place called Amirsoy.
1: Okay.
2: So it's, if I'm not mistaken, it's roughly 1 hour drive from Tashkent.
1: Okay.
2: It used to be my weekend, kind of a weekend getaway, where we have nothing to do at home.
1: Lovely.
2: Okay, we just, drive, and then you are in the mid of glaciers.
1: Wow.
2: Amirsoy, so this is not to be missed.
1: Lovely. Ab ye to ho gaya ghumne phirne ki baat, par kahin par jao aur wahan ka local food try nahi kiya ho. Bhai aap kahan ke traveler hue phir?
2: Wo to hai.
1: Khane ki baat bataiye Uzbekistan ke.
2: So, I mean, I think my favorite is the very famous somsa.
1: Okay.
2: It's the very first time in my life where I saw, see, I'm from India, so you see the samosa, which is somsa, which is normally fried. In Uzbekistan, you will have baked samosa.
1: Wow.
2: So for all health freaks, go on, no problem. And you can have veg and non-veg both. Apart from that, you have the Uzbeki pulao.
1: Okay.
2: Which is also amazingly well.
1: बस यार मैं पूरा ना उज़्बेकिस्तान यहाँ पर इमेजिन करने लग गई, जगह और खाने और ये सारी चीजें, और आप भी आई एम श्योर साथ में ये कर रहे होंगे। लेकिन एक मजे की बात और बताती हूँ उज़्बेकिस्तान जाने के लिए, प्लान बनाना है झटपट प्लान उनके लिए भी बन सकता है जिनके पास यूएस वीजा है, शेंगेन वीजा है, इनके लिए वीजा ऑन अराइवल है, इफ आई एम राइट, यस मिस्टर संतोष,
2: मेजॉरिटी ऑफ नेशनलिटीज,
1: बिल्कुल
2: फ्रेंडली कंट्री।
1: तो बस क्या है, हो गया आपका एक, यहाँ पर हमने बैठे बैठे आपका एक ट्रैवल प्लान बना दिया। एंड टू इवन बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री होना ना, तो बस सदगुरु ट्रैवल इज द नेम वेयर यू हैव टू रीच।
2: एब्सोल्युटली।
1: फिलहाल आप फ्री ने आपके साथ, मिस्टर संतोष भी हैं, और भी बातें करेंगे ट्रैवल के बारे में राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: हमारे ना मिर्ची लिसनर्स बड़े स्मार्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है ना, हमारे सारे रेगुलर लिसनर्स का मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। बताओ भाई, कहाँ जा रही है मिर्ची इस बार अपने लिसनर्स को लेकर? वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्मिनल, जो अपने सीजन 5 तक आ गया है। क्या बात है भाई। लेकिन इसमें इसका श्रेय हम एक बहुत ही खास कंपनी को, हमारे खास हमारे साथ कह सकते हैं कि ये ऐसा है जो बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे मिर्ची टर्मिनल का, एंड वो जो ये पूरे ट्रिप को बहुत ही इजी, कंफर्टेबल और इट जस्ट टेक्स ऑल आवर स्ट्रेस अवे, एंड दैट इज सतगुरु ट्रैवल। और सतगुरु ट्रैवल से डायरेक्टर ऑफ सतगुरु ट्रैवल संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड संतोष जी, हमें सतगुरु ट्रैवल ने केन्या घुमाया, फिर उसके बाद में मिर्ची टर्मिनल गई थी मोरक्को, एंड नाउ मिर्ची टर्मिनल फिर से सतगुरु ट्रैवल के साथ जा रही है। लेकिन कहाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइज ही रखते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सतगुरु ट्रैवल एज होल, के आप किस टाइप की सर्विसेज कर देते हैं फॉर आवर लिसनर्स जो आपके साथ में ट्रैवल बुक करना चाहते हैं।
2: सो इट्स अ होल गैमट ऑफ सर्विसेज, राइट फ्रॉम आई मीन एज यू नो एज नॉर्मल एज पिकअप ड्रॉप ऑफ, टूअर्स, obviously the visa services and hotel bookings. And talking about the company is 35 years plus into the business. We are proudly into 100 countries plus.
1: Wow.
2: When I say 100 countries plus, it is not a franchise model, it's a self-managed and financed.
1: सेल्फ-मैनेज से एक अच्छी चीज हमें ये लगती है कि जब हम केनिया गए थे वहां पर, I'm sure, वहां पर भी वो पूरी तरह से आपका एक ब्रांच सतगुरु का केनिया में भी था। यस, तो जो ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट्स भी जो हमारी थी वहां पर, वो भी काफी अच्छी तरह से आप लोगों ने उसका टेक केयर किया है। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड इन श्रीलंका एज वेल। सो दिस इज व्हाट के सतगुरु ट्रैवल का काफी एक्सटेंसिव एक स्प्रेड है ऑल ओवर ग्लोब आई वुड से। और वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू मिस्टर संतोष। एंड जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन एयर, एंड लाइफ इज शॉर्ट, अनप्रेडिक्टेबल, पैक योर बैग्स एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड।
1: True that. I cannot agree more than this. मतलब हमारे रेडियो इंटरव्यू के पहले इतनी सारी बातें हुई हैं, पूरे हम ग्लोब घूम कर फिर इधर आपके पास आए हैं। So all travel enthusiasts there, you will definitely relate to this कि travel जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है, और अगर आप उसको lightly ले रहे हो ना, तो एक बार घूम लो यार, घूम कर आ जाओ। और थोड़ा स्ट्रेस नहीं चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सतगुरु ट्रैवल है, उन्हें अप्रोच कर लीजिए, वो आपकी सारा का सारा ट्रैवल बहुत अच्छी तरह से प्लान करके दे देंगे। Meanwhile, आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर संतोष
2: फॉर ज्वाइनिंग
1: अस दिस मॉर्निंग। आप बने रहिएगा हमारे साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट यू नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bolda only on Mirchi it's hot।
3: Kids are back to school, busy schedules, homework, classes, tests, phew, so much to do। We know education is important, but hey, little moments of fun are important too। So are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge driven by GWM is coming to your school। Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises, because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too।
3: This initiative is driven by GWM।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अब आप एक कंट्री की पॉपुलैरिटी कैसे पता करते हो? ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग वो कंट्री विजिट करते हैं दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द पॉपुलैरिटी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की गर्मा गर्म खबर है,
1: क्या खबर कतर
0: कि कतर के लेटेस्ट टूरिज्म नंबर्स आ गए हैं। तो 2026 में अब तक 26 लाख से ज्यादा लोग हमारे कतर विजिट कर चुके हैं। यस, कतर टूरिज्म के लेटेस्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग पहले 9 मंथ्स ऑफ 2026 में 2.614 मिलियन विजिटर्स कतर आए हैं, लैंड एयर और सी एंट्री पॉइंट्स मिलाकर। सिर्फ सितंबर में ही अगर देखा जाए तो अराउंड 2,76,000 विजिटर्स आए हैं, जो पिछले साल के सितंबर से 1.1% ज्यादा भी है। एंड इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ा शेयर जीसीसी कंट्रीज का रहा है, अराउंड 40.9%, उसके बाद एशिया एंड ओशिनिया 21%, एंड देन यूरोप है 20.6%। और जब 26 लाख का नंबर सुनते हैं ना तो रियलाइज होता है कि कतर अब सिर्फ स्टॉप ओवर या बिजनेस डेस्टिनेशन वाली इमेज से अब काफी आगे निकल चुका है। हम यहाँ रोज की लाइफ जीते हुए शायद नोटिस ना करें, लेकिन दुनिया के 26 लाख लोग जो है इस साल कतर को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर मानते हैं, और मानना भी चाहिए भाई। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ कतर ने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है कि टूरिज्म है लेकिन लग्जरी टूरिज्म जो है वो आपको कतर में मिलेगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Who that?
1: Jassi.
0: Jassi? Kaun si wali Jassi?
1: Jassi who has come, auntie ji?
0: Khat khat, who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
3: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis wala murga.
4: Mirchi, murga.
5: हेलो मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
6: नहीं तो।
5: आपने नहीं किया है?
6: नहीं
5: तो फिर किसने किया है सर? ये सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
6: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
5: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
6: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है।
5: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
6: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
5: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
6: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
5: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
6: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
5: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता
6: ठीक बोल रहा ना, वहीं जाके बजाऊंगा।
5: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए।
6: सबको लगा दूंगा लाइन में।
5: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
6: क्या
5: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
6: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
7: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
5: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
9: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
10: इट वाज द बेस्ट। आई लाइक द मैजिक शो।
11: मैजिक शो? एंड यू?
10: इट वाज वेरी नाइस।
11: यू लाइक्ड इट?
10: यस।
11: वी शुड कम अगेन?
10: यस।
11: व्हाट्स योर नेम?
10: आयरा।
11: एंड योर्स?
10: अनविता।
11: व्हाट वाज द बेस्ट?
10: द मैजिक शो।
12: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
13: मिर्ची रिचार्ज।
14: थैंक यू मिर्ची, थैंक यू GWM, वी एंजॉयड इट्स हॉट।
15: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
16: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
17: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
15: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
18: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
19: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.

सुनिधि चौहान की आवाज में साथ देते हुए दिव्या कुमार राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को एंड यस इट इज वीकेंड। बड़ा ही सुकून लगता है जैसे ही वीकेंड आता है। महीने का ये हमारा पहला वीकेंड नहीं, देखा जाए टेक्निकली तो दूसरा है, लेकिन यस पहला हो तीसरा हो दूसरा हो क्या फर्क पड़ता है। वीकेंड इज वीकेंड फॉर अस, लेकिन वीकेंड पर जनरली वो कहते हैं ना थोड़े से इंपॉर्टेंट से काम कर लेना चाहिए, वैसे ही एक्सचेंज रेट सुन लीजिए और तुरंत टाइम निकाल कर ये भी काम कर लीजिए। वेल आज की एक्सचेंज रेट जो है वो कहते हैं एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.48, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज जो है वो आपको मिल रहे हैं 76.17 पर। वेर एज अगर बांग्लादेशी टाका पर नजर डाले तो इट इज एट 33.76। श्रीलंकन रुपीज ऑन दी अदर साइड इज एट 90.86 एंड नेपाली रुपीज इज एट 42.37। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। कर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 9.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: रॉकफोर्ट मूवी का ये गाना शंकर महादेवन की आवाज में आसमां के पार, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी दिस वाज। आई रिमेम्बर वाचिंग दिस मूवी व्हेन आई वाज इन स्कूल, और ये मूवी एक स्कूल की कहानी के ऊपर ही थी। हाउ स्कूल में किस तरह से पढ़ाई के अलावा बाकी चीजें भी चलती है, वो सब कुछ इस मूवी में बताया गया था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन को।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: ऑल राइट, इसी के साथ गेम का वक्त हो चला है जिसे मैं कहती हूँ मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। दैट्स राइट, लेकिन आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से एक ऐसा गाना निकला है, ठीक है, जो आपको पहचानना है कि ये कौन सी मूवी का गाना है। एंड आई थिंक सो दिस इज गोना बी क्वाइट इजी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला है आपके लिए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर आपको, इफ यू आर लकी यू कैन विन टिकट फॉर दैट वन एंड ओनली बॉलीवुड मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट दैट इज 30th अक्टूबर को जो होने वाला है, जहाँ अनुराधा पौडवाल जी खुद आने वाली है, विनोद राठौड़ आने वाले हैं, and also Junior Kumar Sanu. So yaar, all in all, it's gonna be the moment of our evening. मतलब यार वो 90s के गाने जो हमें पूरे के पूरे मुंह जबानी याद है और हम पूरी तरह से enjoy करते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ सुनने मिलेगा। So इसकी मैं एक winner को lucky ticket देने वाली हूँ, जो बता दे मुझे, ठीक है, कि ये गाना, एंड इट्स क्वाइट सिंपल टुडे एंड इट्स गोना बी क्वाइट रैंडम विनर एज वेल, कि ये जो गाना है ये कौन सी मूवी से है।

That's quite easy, I think so, है ना? We all know it. You know it, right? 5001896 पता है तो बता दो फटाफट से वहां मैसेज करके कि ये कौन सी मूवी का गाना है एंड यू स्टैंड अ चांस टू विन अ टिकट फॉर ये मतलब ये गाना आप लाइव सुन सकते हो 30th अक्टूबर को, है ना? तो चलिए यहाँ मैसेजेस आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं एंड माय मैसेज बॉक्स इज ऑलरेडी फ्लडेड. सो मैं चाहती हूँ इन्हें रिप्लाई करती हूँ. मीनवाइल आप जो है अगला गाना सुन लीजिएगा विशाल मिश्रा की आवाज में ऑन माय चीट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल, कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
2: I don't have to mouth those.
3: Sorry bro, sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
4: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर DECC दोहा, फूड कतर 2026, कनेक्ट डिस्कवर और ग्रो।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: इट वाज द बेस्ट। आई लाइक द मैजिक शो।
7: मैजिक शो? एंड यू?
6: इट वाज वेरी नाइस।
7: यू लाइक्ड इट?
6: यस।
7: वी शुड कम अगेन?
6: यस।
7: व्हाट्स योर नेम?
6: आयरा।
7: एंड योर्स?
6: अनविता।
7: व्हाट वाज द बेस्ट?
6: द मैजिक शो।
8: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
9: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
10: It's back. It's back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry. Offer valid till 19th October.

एंड दैट इज अरिजीत सिंह और रूपाली मोगे की आवाज में अटक गया है, और मेरा भी यहाँ पर सवाल आपके पास अटक गया है। वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स मिर्ची मॉर्निंग्स और आफरीन है आपके साथ। और यहाँ पर अब तो यार मैसेजेस की बरसात होगी ना, मुझे पता है, क्योंकि आज तो आफरीन आपके लिए कुछ लाई भी है साथ में। Mystery Box में से एक गाना निकला और आपने गेस करना था ये कौन सी मूवी से गाना है। एंड ऑफ कोर्स वी नो सिंगर कौन से है, क्योंकि यार सिंगर ही तो है जो हमारे कतर में आने वाले हैं ये वाले गाने के। एंड वी आर सुपर एक्साइटेड, ऑनेस्टली मी पर्सनली आफरीन जो है 90s की आप तो जानते ही हो कितनी बड़ी फैन है, और मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं राइट नाउ और जो कह रहे हैं अरे यार आफरीन हम भी तो है इस 90s के फैन में, तो बस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार। अब तो फिलहाल एक लकी विनर है जो जीतने वाला है इसकी टिकट, लेकिन इंतजार मत करो, खरीद लो टिकट ठीक है। आज तो ये गाना आपने पहचानना था और बताना था ये कौन सी मूवी से है।

0: राइट ऑल राइट, बहुत सारे मैसेजेस इधर आए हैं ऑफ कोर्स, और अभी भी अगर आप मैसेज करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी 5000196 ओके. लेकिन लेकिन लेकिन यहाँ पर मैसेजेस जो है पहले मैं आपको वो सारे सुना देती हूँ.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam.
1: My name is Abdul Latif.
0: Okay.
1: This movie name is Sadak.
0: All right.
1: Thank you.
0: Okay.
2: Hi Afreen. Haan good ji. Morning. कैसे हो?
0: बिल्कुल बढ़िया.
2: ये song था तो मैं अपना बनाने की कसम खाई है. This song is from movie Sadak.
0: Okay.
2: Thank you. Have a good day.
3: Hello, my name is Manish Kumar.
0: Hi ji. Very good morning.
3: The answer is movie Sadak.
0: Okay. Hi Afreen.
4: Good morning. The movie name is Sadak.
0: Okay.
4: It's Sanjay Dutt and Pooja Bhatt.
0: All right.
5: Hi Afreen, this is Yair Rakesh. A song Sadak movie se hai aur bahut hi mera favorite song.
0: Bahut hi aapka favorite gana hai and I'm telling you mera bhi ye bahut favorite gana hai aur bahut sare logo ne aur bhi messages kiye hai yahan pe.
6: Good morning Afreen ji.
0: Very good
6: the
0: morning.
6: My name is Sadak.
0: Okay.
6: My name is Raj.
0: Hi ji Raj.
6: Good weekend. God
0: you
6: bless.
0: Too have a great weekend, Raj. इतने सारे लोगों के messages जब आए हैं तो हम select किसको करेंगे यार? लेकिन randomly यहाँ पर हमने एक winner बनाया है and जो मैंने last message play किया है that is Raj का message. Raj, you are the winner for this कॉन्सर्ट जो होने वाला है 30th of October, जहां अनुराधा पौडवाल जी खुद आने वाली है, साथ में जूनियर कुमार सानू भी आएंगे एंड देन विनोद राठौड़. कोई ना कोई चाहिए, आई यार मजा ही आने वाला है. एंड इनफैक्ट हम सारे लोग होने वाले, मिर्ची की पूरी टीम होगी यार, साथ मिलके बहुत मजे करेंगे. फिलहाल तो ये अगला गाना एंजॉय करते हैं. इतने से तो आपका जी नहीं भरा होगा जो मैंने हल्का सा क्लिप सुनाया था सड़क मूवी का. ये गाना पूरा गाना सुनने की आपको बहुत इच्छा रहेगी ऑफ कोर्स. सो हियर इट इज, गेट लॉस्ट इन दिस ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दिस सॉन्ग एंड अमेजिंग मेलोडी और खूबसूरत सी आवाज में. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Well, I am a huge fan of this song. Something I think so is special. James ki awaaz hai, inki lyrics hai, gangster movie ka ye gaana. I just get lost in the song sometimes. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन जुड़ गई है आपके साथ एंड इट्स अ वीकेंड मॉर्निंग और वीकेंड पर आफरीन लेकर आई है आपके लिए गोल्ड के अपडेट्स.
1: गोल्ड अपडेट
0: फटाफट से गोल्ड अपडेट्स बता दो आपको. 1 ग्राम गोल्ड जो गोल्ड बार है उसका रेट आज का है 561 कतरी रियाल, वेरस 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2626 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5182 कतरी रियाल एंड 16,000

0: 15 Kathedral is for 1 ounce gold bar and 10 tola gold bar is for 59,445 Kathedral. ये थे आज के गोल्ड रेट. अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो की आवाज में. टाइटल ट्रैक ऑफ ये प्रेम मोल लिया एंड समवेयर आई थिंक सो आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी बड़े पर्दे पर, है ना, मजा आएगा.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars and earn Qatar Airways Avios today. Visit our branches or download the app now.
2: Mirchi, fresh maal.
3: Mohabbat ke har rang ka ehsaas, ye prem mol liya.

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा।
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर था। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
5: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
4: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew. So much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
9: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
10: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
11: कैसे रुक सकता है?
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: नंदिनी सरकार की आवाज में साथ देते हुए अरिजीत सिंह, ये गाना राइट जॉन मिर्ची। और आज बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में। वैसे कुछ कलाकार होते हैं ना जो सिर्फ फिल्में नहीं करते, अपना किरदार से उसके जरिए हमारी यादों का हिस्सा भी बन जाते हैं। और ऐसे ही एक कलाकार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज नाना पाटेकर। क्रांतिवीर के प्रताप नारायण क्यों ना हो, या फिर तिरंगा के शिवाजी राव वागले हो, या अब तक 56 के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साधुआगा से, और फिर वेलकम के उदय शेट्टी, ये तो याद ही होंगे आपको। सोचिए एक ही एक्टर कभी इतना सीरियस, इतना इंटेंस, और कभी अपनी कॉमेडी से हमें इतना हंसा देते थे। लेकिन नाना पाटेकर सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2015 में उन्होंने एक्टर मकरंद अनासपुरे के साथ नाम फाउंडेशन शुरू किया था, महाराष्ट्र में सूखे से, ड्रॉट से परेशान किसानों की मदद के लिए। उन्होंने किसानों के परिवारों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और गाँव में पानी की समस्या दूर करने के लिए भी काफी काम किया। और आज सुबह एक बेहद दुखद खबर आई है कि 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर के गोवा में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने घर पर बेहोश पाए गए। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वेल, तीन नेशनल फिल्म अवार्ड्स, पद्मश्री और लगभग 5 दशकों का एक यादगार फिल्मी सफर। लेकिन जानते हो, आज जब हमें उन्हें याद कर रहे हैं हम सभी, तो उनका एक ही डायलॉग है जो मुझे सबसे ज्यादा आज दिल को छू गया है। वो कुछ इस तरह से,
1: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, वहां रे हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे।
0: सो ट्रू, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बाहर हमको ढूंढेंगे, न जाने हम कहां होंगे। और नाना पाटेकर साहब, आपके अफसाने तो अब भी बयां होंगे, आपके किरदार, आपकी फिल्में हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। मिर्ची वन कतर की तरफ से आपको दिल से श्रद्धांजलि। और कहते हैं ना, किसी के जाने के बाद उनकी अच्छी चीजें याद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल में ना, उनकी जो अगली मूवी का मैं ये गाना आपको जो सुना रही हूँ, इसमें ना उनकी आवाज़ है, एंड आई थिंक सो, ऐसा कोई गाने में शायद नहीं थी नाना पाटेकर जी की आवाज़। ठीक है, तो ये टैक्सी नंबर 911, जहाँ इनका किरदार एज अ टैक्सी ड्राइवर मुझे बहुत मज़े का लगा था, इसका ये गाना इन्जॉय कीजिएगा, और इसमें नाना पाटेकर की आवाज़ भी आप इन्जॉय कीजिएगा। ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, वीकेंड आ गया है और आफरीन आपको एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखते हैं भाई ओटीटी पर क्या जलवा चल रहा है।
2: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: वेल, मार्केट में नया नेटफ्लिक्स के परिणीति चोपड़ा की एक अपकमिंग मूवी आई है। देख रही हूँ आजकल परिणीति चोपड़ा ओटीटी फोरे में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इसका जो नाम है, इसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव एंड दिस इज अगेन अ क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर। इससे पहले भी जो इनकी मूवी आई थी शक, वो भी एक थ्रिलर मूवी जैसी थी, सस्पेंस था उस पे काफी। वेल अगर इसकी बात करें तो इसमें परिणीति चोपड़ा जो है संध्या का किरदार निभाती है, एम्बिशियस यंग जर्नलिस्ट है एंड इनके साथ जो है देवेन भुजानी। वेल, आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देवेन भुजानी। वेटरन एक्टर है भाई, ये कॉमेडी भी करते हैं एंड बहुत मजे के एक्टर है। फिलहाल उनको हमने चुंबक में भी देखा था, सो वो वहां पर भी बहुत मस्त उन्होंने एक्टिंग की थी। उसके बाद बात करते हैं इमरान हाशमी की मूवी आवारापन 2, ये जो है अमेजॉन प्राइम पर ये भी आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इश्का ये एक सीरीज है विच इज ऑफ ऑल न्यू कैरेक्टर है इसमें। उसके बाद अगर बात करें तो पूजा मेरी जान, ये जो है ये Z5 में क्राइम थ्रिलर अगेन जो आ गई है और इसमें आपको मृणाल ठाकुर नजर आएंगी, हुमा कुरेशी नजर आएंगे, विजय राज भी है। सो यस, द स्टारकास्ट लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव। और थोड़ा सा कॉमेडी की बात करते हैं, माय फेवरेट जॉनर ऑफ एंटरटेनमेंट आई वुड से इज कॉमेडी, दो पहिया सीजन 2। दो पहिया सीजन 1 आपने देखा था? अरे इसका जो स्टारकास्ट है ना बहुत ही गजब है। गजराज राव है, रेणुका हैं, स्पर्श श्रीवास्तव जो लापता लेडीज में था, यस वही है इसमें एंड सो मेनी मोर। सो आई थिंक सो इसका जो सीजन 2 ये भी मजेदार होगा, बहुत ही फनी होगा, ये भी आप देख सकते हैं। वेल, अमेजॉन प्राइम पर ये भी आ चुका है। सो काफी सारे ऑप्शंस आफरीन लेकर आती है, सो यू जस्ट हैव टू पिक फ्रॉम दिस और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। राइट हियर आफरीन है आपके साथ, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
2: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldar. Only on Mirchi. It's hot.
3: It's back. It's back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry. Offer valid till 19th October.
4: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
5: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
4: खट खट हू दैट
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट।

0: That is Javed Ali Kirti Sagatia ki awaaz mein ye gaana right here Rajna movie se on Mirchi. And sometimes I'm quite amazed jis tarah se ye shayar ye writers apni jo एहसास है एक इमोशंस है इतनी खूबसूरती से अल्फाजों में लिख लेते हैं और बस ये वही वक्त होता है जब मैं अपने अंदाज़े बयां में आपके लिए ये बयां करती हूँ।
1: आफरीन की डायरी से शायरी शायरी
0: तर्स किया है नजर को नजर की नजर ना लगे नजर को नजर की नजर ना लगे कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे तुझे देखा है इस नजर से सुन रहे हो कि तुझे देखा है इस नजर से जिस नजर से तुझे नजर ना लगे हाउ स्वीट सच में वो कहते हैं ना कि अपनों की नजर थोड़ी ना लगती है अब बस बात ये है कि आप अपना किसको मानते हो माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स ऑल

वेल, ये मूवी में शाहिद कपूर थे एंड करीना कपूर थी, एंड एट दैट पॉइंट वी वर थिंकिंग कि यार ये जोड़ी कुछ थोड़ी सी मिसमैच लग रही है, बट इवेंचुअली वी स्टार्टेड लाइकिंग दिस कपल, है ना. एंड ऑल्सो दिस सॉन्ग ब्रिंग्स मी टू दिस रियलाइजेशन दैट इस गाने में तो सपना मुखर्जी थी, उन्होंने ये गाना गाया है. सपना मुखर्जी याद है आपको, एक गोरी गोरी सी थी, इफ आई एम राइट, उनकी घारी घारी सी एक कुछ आंखें थी. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. एंड ऑफ कोर्स आज की मॉर्निंग तो खूबसूरत लगनी ही है. इट इज थर्सडे मॉर्निंग, वीकेंड की मॉर्निंग है. ये वो वक्त है जब आप खुद के लिए वक्त निकालोगे, खुद के बारे में सोचोगे, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट. मतलब हम इतने ज्यादा घिर चुके हैं ना, हमारे रूटीन से तो है ही, फिर एक अलग सा ना प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है कि हमें जो है ये सारी चीजें करनी है वीकेंड पर, लोगों को भी मिलना है, घर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, एंड अमंगस्ट एडमिस्ट ऑल दिस थिंग्स समवेयर वी आर लूजिंग आवर सेल्फ. और क्योंकि यहाँ मौसम अच्छा हो रहा है ना, अक्सर मैं अकेली जाती हूँ कहीं पर, यू नो माय प्लेस दोहा पोर्ट होता है, मीना पोर्ट होता है, यहाँ पर मैं अकेली जाकर कुछ वक्त गुजारती हूँ, एंड लोग ना सरप्राइज होते हैं सोचकर, आफरीन रियली अकेले जाकर अच्छा लगता है क्या, आई मीन हाउ कैन यू एंजॉय विदाउट समवन्स कंपनी. एक बार ट्राई करो ना, खुद की कंपनी से बेहतर दूसरों की कंपनी पे आप इतना भरोसा कैसे कर सकते हो. पहली बात, खुद जाओ, जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ. ट्राई करो किसी दिन अकेले जाकर वहाँ सुकून से बैठना. वेदर इज एक्चुअली गुड, शाम के वक्त में तो जा ही सकते हैं. एंड टेल मी देन हाउ डिड यू फील, है ना. माइक से दिल तक आफरीन है, लेना चाहे कि अलविदा, और इजाज़त है मैं जाऊं, अपना खुश रहिएगा और वीकेंड खूब अच्छे से एंजॉय कीजिएगा. और जाते जाते आपके लिए ये गाना दे जा रही हूँ मैं सचिन टंडन की आवाज में, प्यारा सा गाना है, एंजॉय कीजिएगा. और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: यार सच कह रही हूँ, मैं कुछ भूल पाऊँ या ना भूल पाऊँ, लेकिन इसे भुला पाना बहुत मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती कि फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका होता है आपको और हमको बेसब्री से इंतजार, यानी कि वीकेंड। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट थर्सडे। माना कि अभी कुछ घंटे का काम बचा है, लेकिन थर्सडे आ गया मतलब आप और हम जो है अपने ब्रेन को ऑलरेडी हॉलीडे मोड में, वीकेंड मोड में प्रोसेस जो है ना वो कर ही चुके हैं। लेकिन अगर 90s की बात करूं, अपने बचपन के दिनों की बात करूं, तो यार जब भी वीकेंड आया करता, स्कूल की छुट्टी हुई करती, एक एज पे आने के बाद ना अलग सी बेचैनी एंड बेकरारी हमारे अंदर आ ही जाती थी। स्पेशली जब हम जो है ना वो क्रश वाले फेस पे हो रहे थे, नहीं अलग क्रश हमारे अंदर था जिसको चलते घर वाले हमें बहुत क्रश किया करते थे। याद है वो लैंडलाइन का जमाना जब पूरे घर पे एक ही फोन हुआ करे एंड ट्रिंग ये घंटी बजे और हम जो है फोन के आसपास कुछ इस तरह से मंडराने लगते थे जैसे चौकीदार की ड्यूटी जो है ना फोन की हमारी लगाई गई है कि भैया फोन जो है मम्मी पापा का है या हमारा है। पापा घर पे है तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर मम्मी है तो जरूर बोल सकते हैं, मम्मी फोन ना उठाना, हमारा फोन है। या तो हमारी फ्रेंड का फोन है या तो हमारे फ्रेंड का फोन है, जिसका भी फोन है। लेकिन अगर घर वालों ने कुछ पता लगाने की कोशिश कर ली एंड उसके बाद कुछ पता चल गया, फिर जो छुट्टी के दिनों पे घर पे हमारी क्लास लगती थी ना, रियलाइज होता था भाई साहब इससे अच्छी तो क्लास में टीचर की क्लास होती है। क्या जमाना क्या दौर था यार। आज की डेट में सबके पास अपना अपना फोन है, एक अलग प्राइवेसी है, लेकिन वो दौर कुछ अलग ही था, है ना, वो बेचैनी वो बेसब्री। चलिए कोई ना, आपकी वीकेंड वाली बेचैनी बेसब्री मैं कम करूं, कुछ खास बातें आप तक पहुंचाऊं। लेकिन अभी करते हैं शो की शुरुआत इस अगले प्यारे से गाने के साथ। स्वागत है आपका पूरे स्वैग के साथ।

Hoy, bendiga nam, Anshu.

0: Nici.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieta la murga. Nici, murga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कॉन्टेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू दैट?
5: जाहिर।
6: जाहिर, जाहिर हूँ।
5: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
6: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: भाई साहब, सच कह रही हूँ, ये जो खबर है ना, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो, जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही विन विन वाली सिचुएशन भी है। अगर 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने की रेस में दुनिया की कंट्रीज की बात करें तो जहां पे नाम है जर्मनी का, हंगरी का, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की का, वहीं दूसरी तरफ दो ऐसे नाम हैं जो हमारी दिल और धड़कन दोनों ही बने हुए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भारत एंड कतर, यानी कि इंडिया एंड कतर। एंड नवम्बर में ये सात नेशंस अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आगे सारा का सारा डिटेल पेश करने वाले हैं। हालांकि बात यह है, फाइनल रिजल्ट की बात करें, इलेक्शन की बात करें, ये कौन सा देश है जो ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करेगा, ये तो हमें 2029 पे ही पता चलेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन सच कहूं, चाहे भारत या कतर में से किसी भी देश को मिले, जीत जो है अपनी ही है, क्योंकि एक हमारी जन्मभूमि एंड दूसरी हमारी कर्मभूमि। लेकिन अगर कतर की बात करें, भाई साहब, जिस हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, उसके बाद इमेजिन करो अगर ओलंपिक्स भी कतर में आ जाए, क्या गजब जो है कारनामा हो ही जाएगा। एंड इसके अलावा 2030 में फाइनली एशियन गेम्स भी एक बार कतर में वापस आ ही रहा है, तो बढ़िया है जी, हम तो यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर भारत में होता है तो वहां पर भी मौजूद हो ही जाएंगे। आपके हिसाब से वो कौन सा देश है जो 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करेगा, ये आपको लगता है, बताओ जल्दी। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल, यू ऑल स्टेडी इनटू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: कौन है?
9: स्टेन।
8: स्टेन कौन?
9: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को। मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
10: खट-खट, who that?
11: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

यार मुझे एक बात बताना, क्या आपके घरों में भी बचपन के दिनों में दूध को लेकर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था? मिर्ची अंशु, यार सच कह रही हूँ, कुछ भूलू या ना भूलू लेकिन बचपन के दिनों का 10th ग्रेड जो है मैं कभी नहीं भूल सकती, जब सुबह सुबह एक दिन हड़बड़ी में मैं दूध पीना भूल गई। एंड भाई साहब उसके बाद जो कोहराम हुआ ना, उसकी दास्तां बयां करें तो कैसे करें। मेरी दादी अम्मा सीधा सुबह सुबह मेरे स्कूल पहुंच गई वो दूध का टम्बलर लेकर। प्रिंसिपल से बात किया, क्लास के बाहर खड़े होकर मुझे सारे बच्चों के सामने दूध पिलाया कि भाई मेरी बेटी जो है दूध पीना आज भूल गई, जरा सोचो पढ़ाई में दिल लगाएगी दिमाग लगाएगी तो कैसे लगाएगी। एंड उसके बाद आप समझ सकते हो कि पूरे साल भर जो क्लास के बच्चों ने मेरी लगाई है। हैविंग सेड दैट, अगर मिल्क की बात करें तो यहाँ पर आपके बीच एक स्पेशल फैक्ट मैं पेश कर दूं, क्योंकि ये आती है बात सीधा हमारे घर से यानी कि इंडिया से। पता है अगर हम दुनिया को देखने की कोशिश करें और एक ऐसे देश की बात करूं जो मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है भारत का। 1/4 ऑफ द एंटायर मिल्क प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड इज बाय इंडिया, यानी कि हर 4 बॉटल जो आप मिल्क की देखते हैं उनमें से एक बॉटल जो है समझ जाओ इंडिया अपने खाते में रखता है। लेकिन पता है क्या, भारत और दूध का रिश्ता जो है ना, ये बड़ा कमाल है। मतलब हमारे घर पे तो ये जरूर था कि भाई बच्चा खाना खाए या ना खाए सब कुछ चलेगा, बस दिन में कम से कम 4 ग्लास दूध पी ले। अगर वो हो रहा है तो समझ जाओ इसका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट घर वालों के हिसाब से तो हो गया। क्या आपके घर में भी ऐसा कोई सिलसिला था, क्या आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि भैया दूध ये तो ना पिया जाएगा? 5001896 waiting for your messages. Meanwhile, you all stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
3: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
4: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: तो चले जरा पैडल मारो अभियान शुरू करें।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे नाना, इस वक्त तुम्हारे साइकिल के पैडल की बात मैं बिल्कुल भी ना कर रही। तुम जो है जरा वही मारने में व्यस्त रहो, हम जो है पैडल का गेम देख कर आए। कतर की एक बात मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्या स्पोर्ट्स कैलेंडर हमें कभी बोर होने ही नहीं देता। हमने फुटबॉल देखा, टेनिस देखा, मोटर स्पोर्ट देखा, एंड अब बारी आ चुकी है पैडल वर्ल्ड कप की। ठीक सुना आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट FIP वर्ल्ड कप कतर 2026 विच इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 2nd अंटिल 7th एट खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वाश कॉम्प्लेक्स। एंड सबसे खास बात, इसमें 16 मेंस और 16 वुमेन्स नेशनल टीम्स वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट करने वाली। अगर आपको लगे यार अंशु साइकिल का पैडल तो हमने बहुत मार लिया, अगर पैडल स्पोर्ट की भी बात कर रही हो तो क्या ही प्रॉब्लम है, टेनिस ही तो है, बस कोर्ट जरा छोटा है। बेटा एक बार जरा खेलने तो चलो, उसके बाद पता चलेगा कि बॉल जो है वो वॉल से आ रही कि सामने से आ रही है। अरे पीछे से आ रही है भाई, जहां से भी आ रही है, लेकिन हमारी सांसें जो है ना ये कहीं और जा रही है। चलिए जरा एक्सपर्ट्स के लिए स्पोर्ट को छोड़ देते हैं, आप और हम मिलकर बैठ कर इस गेम को एंजॉय करते हैं। क्या कहती पब्लिक, स्टेडियम टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु।

ना यार, दोहा में तो ये नहीं हो सकता। वेदर जो है बिल्कुल बेहतर होते जा रहा है, आउटडोर सीजन पूरी तरह से अवेक होते जा रहा है। इस वक्त अगर मैं 10th ऑफ अक्टूबर की बात करूं तो लुसेल बुलेवार्ड पर होने वाला है 5K Dash एज इट इज फाइनली बैक फॉर इट्स 3rd edition एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। देखिए, जब 5 किलोमीटर भागने की बात होती है ना, तो सुनने में बड़ा आसान लगता है जब तक हम खुद ना दौड़ रहे हो। क्योंकि क्या है ना, पहला किलोमीटर तो नॉर्मली एक्साइटिंग ही लगता है, भाई साहब क्या गजब का मौसम है, मजा आ रहा है। दूसरे में वो सेल्फ मोटिवेशन टॉक शुरू होता है एक दूसरे को, हाजी वी हैव गॉट दिस, लेट्स डू दिस। तीसरे आने के बाद समझ में आता है कि भैया फिनिश लाइन है भी या नहीं, या हम जो है यहाँ से कल्टी मार लें। वेल, इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही एक्साइटिंग होगा। अपने दोस्त तैयारों को तैयार कर लें, जो अपने साथ साथ आपको भी मोटिवेट करें कि भाई साहब शॉर्टकट लें तो ले कहां से। वैसे अक्टूबर इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग इन दोहा, बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉन्सर्ट, एग्जीबिशंस, आउटडोर एक्टिविटीज, सब कुछ लाइन अप है। इन सब के डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। उसके लिए काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन।

0: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहा हूँ। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
0: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
0: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
0: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप पता लगा लो।
0: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूं? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
0: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
0: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
0: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
0: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
0: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
2: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
3: FM, Mirchi 1. It's hot.

मटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माची सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

यार सच कह रही हूँ, द मोमेंट मुझे पता चला कि ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है, मेरे दिल से पहला रिएक्शन बस यही निकला, अरे भाई साहब इस चैंपियनशिप में तो मेरी मम्मी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। मिर्ची अंशु अजी पावर स्लैप जैसे कंपटीशन की बात हो और उनमें मम्मियों का नाम ना आए तो बताएं किसका ही आए। बिल्कुल ठीक सुना आपने। वाल इस वक्त अगर मैं दोहा को देखने की कोशिश करूं, सो 19th ऑफ नवंबर इज गोइंग टू बी इंडीड वेरी एक्साइटिंग बिकॉज पावर स्लैप 27 इज फाइनली कमिंग टू दोहा। अली बिन हमद अल अतिया अरीना में अच्छे अच्छे लोगों को आप झापड़ खाते हुए देखेंगे, नो पापड़ की तरह। वेल ये जो कॉम्पिटिशन है ये पूरी तरह से प्रोफेशनल स्केल पे होस्ट किया जाता है एंड कम्पेटिटर्स लिटरली फेस टू फेस खड़े होकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। Now this is an actual regulated sport. Well, इतना ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई competition हो तो क्या आपके दिल में मेरे दिल की तरह ख्याल आता है कि Indian moms को यहाँ पे entry मिल सकती है क्या? क्योंकि हमारे बचपन में तो power slap के लिए ना arena चाहिए था, ना कोई referee, ना कोई championship title, बस मम्मी को जरा सा छेड़ना था या report card में marks जो है वो थोड़े कम लाने थे एंड उसके बाद देखो इसका सिलसिला क्या पावर पैक तरह से हमारी जिंदगी में शुरू हुआ करता था। क्या आपने खाया झापड़ पापड़ की तरह? 5000 1896।

0: कटे।
1: अबे कौन है?
0: उत्तपा।
1: उत्तपा कौन?
0: उत्तपा में दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
1: खट खट हू दैट?
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
2: I don't have to mouth those.
3: Sorry bro, sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: दोस्ती का गुस्सूल है मैडम. नो सॉरी, नो थैंक यू.
5: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
6: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: अजी सुनो, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे नाना, सिंगिंग पे कोई अटेम्प्ट मेरा इस वक्त नहीं लग रहा, ना ही जिंदगी का। मैं आपको कोई उसूल सिखा रही, कोई तो खास बात है जो बस आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रही।
1: मिर्ची अंशु
0: यार देखो, बात जो है ना बड़ी सिंपल है। अगर बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्में हैं जो हमें एंटरटेन की, कुछ फिल्में हैं जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने पूरी तरह से इंडियन सिनेमा को अमर बना दिया। एंड उनमें से एक फिल्म है मुगले आजम। इमेजिन करें कि वो लव स्टोरी जिस कहानी ने हमारे दिल को कुछ इस तरह से छुआ कि आज भी उसकी झंकार हमें सुनाई देती है, वो लाइव स्क्रीन पर हम ठीक अपनी आंखों के सामने नहीं बल्कि लाइव थिएटर के तौर पर परफॉर्मेंस एक्ट के जरिए देख पाए तो वो एक्सपीरियंस कितना खूबसूरत होगा। तो जितने भी बॉलीवुड एंड थिएटर लवर्स हैं, ये आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है ऑन 6th and 7th of November एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर अल मयासा थिएटर, जब एक बार फिर से मुगले आजम का जादू हम जी पाएंगे मुगले आजम द म्यूजिकल के जरिए। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ना यार, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है कि एक कहानी जो जनरेशन पहले सिनेमा पर आइकॉनिक बनी, वो जनरेशन चेंज होने के बाद भी आज भी जिंदा है। अनारकली, सलीम, वो डायलॉग्स, वो म्यूजिक, वो ग्रैंडर, यार इससे खूबसूरत एक्सपीरियंस और क्या होगा। तो अगर आपको लगता है कि 6th and 7th of November को आप भी इस आइकॉनिक स्टोरी को फिर से जीना चाहते हैं तो बस विजिट कतर के पेज पे जाइए, सारे डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। फटाफट से टिकट्स जो है आप परचेज करिए, अपने नाम की और एक मेरे नाम की, साथ में मिलकर एंजॉय करें। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

भी एंड दस्तूर भी एंड अच्छे एक्सचेंज रेट्स की बाहर भी अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो जरा देखते हैं आज आईपी मनी क्या कहता है. वेल अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.49, पाकिस्तानी रुपीज 76.16, बांग्लादेशी टका 33.76, लंदन रुपीज 90.86 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 42.31. तो बस घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन. Enjoy.

ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जब पता है कि गोल्ड वेट्स इतने अच्छे हैं तो कल का वेट क्यों करना। वेल वेल, जरा देखें आज अल्फरदान एक्सचेंज में आज का गोल्ड वेट क्या ही कहता है। अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे तो पैंप 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चून

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
6: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस. मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
7: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
8: इट वाज द बेस्ट. आई लाइक द मैजिक शो.
9: मैजिक शो? एंड यू?
8: इट वाज वेरी नाइस.
9: यू लाइक्ड इट?
8: यस.
9: वी शुड कम अगेन?
8: यस.
9: व्हाट्स योर नेम?
8: आयरा.
9: एंड योर्स?
8: अनिता.
9: व्हाट वाज द बेस्ट?
8: द मैजिक शो.
10: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स.
11: थैंक यू मिर्ची. थैंक यू GWM. वी एंजॉयड. इट्स हॉट.
6: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस. मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
12: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी. जा बेटा, जा.
13: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6 FM मिर्ची वन.
16: इट्स हॉट.
15: 89.6
16: It's hot.

0: यार एक काम करते हैं, इनसे जरा कुछ सीख लेते हैं और जरा कुछ सिखा भी आते हैं।
1: मिर्ची अंशु,
0: क्योंकि बात इतनी है कि सिर्फ सीख के बिना कुछ सिखाए हम आ जाए, अरे ना, ये तो हमसे ना हो पाएगा। यार अगर अपनी जनरेशन यानी कि मिलेनियल्स की बात करें तो हम सबकी जिंदगी में ना एक ट्रेंड बड़ा ही कॉमन है, और वो ट्रेंड है हमारे कबर्ड में रखा हुआ अच्छा कपड़ा। बचपन की वो टी शर्ट याद है जिसे आप बिल्कुल भी घर पे नहीं पहन सकते थे, क्यों? अरे ये बाहर का है, अच्छा कपड़ा है। वो जूता याद है, अरे नाना इसे अभी नहीं पहन सकते, खराब हो जाएगा, बाहर का है। वो नया डिनर सेट घर पे क्यों निकाला, अरे जब मेहमान आएंगे उनके लिए, अंदर रखो, नया है ये। वो नई बेडशीट, अरे रूटीन में क्यों बिछा रहे हो, इन्हें बिछाना है तो दिवालिया ईद में बिछाई जाएगी, अंदर रख के आओ। यार कभी कभी वो स्पेशल ओकेजन आते आते हम जो है कपड़ों से बड़े हो गए और मेहमान जो है बिना आए यूं ही रह गए। लेकिन अगर आज की जनरेशन या जेंजीज को देखने की कोशिश करें तो इनसे कुछ तो है जो जरूर सीखा है, भाई आज कपड़े खरीदे, शाम तक वो कपड़ा जो है पहन लेना है और रात तक धुलने में भी ये चला जाना है। खरीदा क्यों है, जिंदगी आज है, इसी पल जीने के लिए। एंड ये बात जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जब से अडॉप्ट किया है, सही कह रही हूँ, अच्छा कपड़ा जो है हर दिन लाइफ में शामिल होने लगा है। लेकिन जेंजीज की एक बात जो मुझे समझ नहीं आती कि कपड़ा रिपीट क्यों करना है। अरे भैया खरीदा इसलिए क्योंकि पसंद है ना, पसंद है, रिपीट करो, कुछ तो सस्टेनेबल बनो। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: खट खट।
2: हू देयर?
1: अगर कर।
2: अगर कर हू?
1: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
2: खट खट। हू देयर?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: यार मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस वीकेंड कहीं और क्यों, चले जरा स्पेस का ही दौरा कराएं।
1: मिर्ची अंशु
0: जी नाना बावली ना हुई, मैं तो बस फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोई कहे कि चलो वीकेंड पे स्पेस चलते हैं तो ये जो बात है ना अब जोक ना रह जाएगी। बोल इतना बता दूं, अगर इस हफ्ते को देखने की कोशिश करें तो भाई दुनिया अगर इसे किसी तौर पे सेलिब्रेट कर रही है तो वो है वर्ल्ड स्पेस वीक। एंड 2026 का थीम है रॉकेट रिवोल्यूशन। 4th of October से लेकर 10th of October तक रॉकेट साइंस की दुनिया में जितने भी गजब कारनामे हुए हैं देश दुनिया में उसे बहुत अच्छी तरह से पहुंचाया जा रहा है। यार एक वक्त था जब स्पेस में जाना सिर्फ कुछ गवर्नमेंट एंड मैसिव नेशनल प्रोग्राम्स के बस की बात थी, लेकिन आज कमर्शियल कंपनीज, रियूसेबल रॉकेट्स, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज एंड न जाने कितने देशों में स्पेस जो है एक्सेस का हिस्सा बनते जा रहा है। एंड आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आप और हम यही डिसाइड करें कि भैया इस बार ये जो छुट्टी है ना स्पेस पे मना के आएंगे, लेकिन कौन से स्पेस पे जाना है ये बाद में डिसाइड करेंगे। चलिए इतना कहना चाहूंगी, रॉकेट रिवोल्यूशन में जितने भी एडवांसमेंट्स हुए हैं क्यों ना इस वीक अपने बच्चों को थोड़ा और उसके बारे में बताया जाए, क्या खुद का ही नॉलेज जरा सा इंप्रूव किया जाए। सर्च मारे कोई अच्छी बात लगे तो मुझे भी बताना। 5000 1896 पर विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ।
4: School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
3: तो दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा, नहीं? आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: सच कह रही हूँ, वक्त बिताने का इससे ज्यादा खूबसूरत तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता।
1: मिर्ची अंशु
0: बस यही कि आप और हम जो हैं वो बातें करते रहे। जरा सोचिए, बातें करते करते मेरे 3 घंटे कैसे पूरे हुए मुझे जेन्युइनली पता ही नहीं चला। मैं आपसे बातें करती रही, आप जो हैं सुनते रहे, बीच बीच में कुछ अच्छे गानों ने हमारा साथ दिया एंड आपके मैसेजेस ने मेरे दिन को और मेरे दिल को पूरी तरह से बना और भर दिया। हविंग सिद्धार्थ इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आज की जनरेशन को देखने की कोशिश करें तो बातें तो होती हैं, गुफ्तगू तो होती हैं, लेकिन हाँ फिजिकली कम, सोशल मीडिया के उस रील्स के जरिए, उस कॉन्वर्सेशन के जरिए ज्यादा। बोल चुकी, वीकेंड आ चुका है, एक बार फिर से आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, दिस इज अ गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली सोशलाइज विद द पीपल अराउंड। सोशल मीडिया की दुनिया से जरा बाहर निकलना, फोन नामक उस डब्बे को जरा पीछे छोड़ना एंड अगर किसी डब्बे में कैद होना है तो वो हो आपका घर, जहां पे हो आपके अपने लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, पीपल यू रियली लव एंड वुड लाइक टू शेयर योर थॉट्स विद, एंड क्यों ना यार उनके साथ कुछ ऐसा वक्त बिताएं कि रील की दुनिया से निकल कर रियल लाइफ को हम और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएं। तो चलिए, मैं तो ये इंप्लीमेंट करने वाली हूँ, आपकी क्या इरादे हैं मुझे बताना जरूर। आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस 5000189 6 इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एक ही बात कहना है, हैप्पी वीकेंड, मसलाम हबीबी।
2: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
3: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: What do women really want?
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, बट इसका आंसर हर औरत के लिए डिफरेंट होता है और शायद इसीलिए मिर्ची व्हाट वुमेन वांट का चार्म भी इतने सालों से बना हुआ है, बिकॉज यहाँ कॉन्वर्सेशन सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं होती, वुमेन के एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस के बारे में होती है। और अब करीना कपूर खान एंड मिर्ची इज बैक विद सीजन 6 ऑफ व्हाट वुमेन वांट, जहां इस बार गेस्ट लिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज ऑनलाइन एज वेल। सबसे पहले तो आपको बता दूं मिर्ची और करीना के इस शो पे मीरा राजपूत इज गोना कम। हां जी, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत उनकी वाइफ, और मिर्ची व्हाट वुमेन वांट का चार्म भी इतने सालों से बना हुआ है, बिकॉज यहां कॉन्वर्सेशन सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं होती, वुमेन के एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस के बारे में होती है। और अब करीना कपूर खान एंड मिर्ची इज बैक विद सीजन 6 ऑफ व्हाट वुमेन वांट, जहां इस बार गेस्ट लिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज ऑनलाइन एज वेल। सबसे पहले तो आपको बता दूं मिर्ची और करीना के इस शो पे

0: अटेंशन ग्रैब की है स्पेसिफिकली फॉर मी, वो है कृति सैनन का एपिसोड. बिकॉज यहाँ पे बात सिर्फ एक आउटफिट या एक एडवर्टीजमेंट की नहीं है, बात है उस जजमेंट की जो एक औरत को मिलती है, स्पेशली जब उसके क्लोथ्स चॉइसेस या लाइफस्टाइल को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लिया जाता है. सो इफ यू रिमेंबर, रक्षाबंधन के टाइम पे कृति सैनन का एक एड काफी ज्यादा वायरल हो गया था एंड उनको काफी सारे बैकलैश मिले थे क्योंकि उन्होंने एक ब्रालेट पहन लिया था व्हाइल टाइंग रक्षाबंधन टू हर ब्रदर. और करीना के साथ इस एपिसोड में कृति ने जो एक लाइन बोली है ना, जो प्रोमो में कट के आया है, इज दैट माई चोली हैड बिकम अ सिक्स पीपल पैनल डिस्कशन ऑन प्राइम टाइम न्यूज. और भाई, इस रेज को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं दैट वी वुमेन एज वेल आर अ ह्यूमन जो जीना चाहती हैं विदाउट कॉन्स्टेंटली बीइंग जज्ड. बट यस, अपने एक्साइटमेंट को कंटेन करते हुए लेट्स वेट जब ये शो फाइनली एयर होगा. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज. फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं.
3: वही, मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: खट खट.
6: हूँ देर.
5: बनता.
6: बनता हूँ.
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
6: खट खट. हूँ देर.
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। Congratulations and celebrations to the much loved pair, Siddharth Malhotra aur Kiara Advani ki baat kar rahi hoon, kyunki unhone apni second pregnancy announce ki hai by sharing the news on their social media with a heartwarming pic of baby booties. Last wo jab parents bane the, it was 2024, ab 2 saal baad ek baar phir se wo second baby ke saath bless hone wale hain. And I'm really really happy for this. The One का मोस्ट लव्ड सॉन्ग छठी मैया, अगर आपने मिस कर दिया तो ब्रो, विशाल मिश्रा की आवाज के बाद अब ये फीमेल वोकल्स में भी आ चुका है, जहां पलक मुच्छाल ने इस गाने में अपनी आवाज दी है. माइंड यू, द वन में सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया लीड रोल्स निभाते नजर आए थे. एंड भाई साहब, बीइंग अ बिहारी, छठी मैया से जो हमारा कनेक्शन होता है उसका तो कोई मोल भाव ही नहीं है. विपुल अमृतलाल शाह की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक एक्सटेंसिव लाइनअप करके रखा है फॉर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस फिल्म्स एंड ओटीटी. सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, उन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं, विच इंक्लूड्स 3 फीचर्स एंड 2 वेब सीरीज. फीचर फिल्म्स की बात करें तो उसमें से एक फिल्म कन्फर्म हो चुकी है विद द नेम समुक, और उसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभाते नजर आएंगे. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेनिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून डन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो अपने डेली ड्रिल की बात कर रही हूँ यार। फाइंडिंग मिर्ची फिल्म ची, हाँ जी, इट्स टाइम। आपको तो पता ही है, आपको इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होता है अपना फोन नंबर ताकि मैं आपको कॉल करूँ और ये गेम आपके साथ खेलूँ। तो आज मेरी बात किससे हो रही है?
3: रिंकू से।
0: रिंकू जी, कैसी हैं आप?
3: बढ़िया हूँ।
0: अरे क्या बात है, गेम खेलिएगा?
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल उसी चलेगी।
0: ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान का नाम ओके यानी ओम कपूर किस फिल्म में था?
3: ओम शांति ओम।
0: ग्रेट। ओम शांति ओम में शांति प्रिया को कौन मारता है?
3: अर्जुन रामपाल।
0: अर्जुन रामपाल ने लीड गिटारिस्ट का रोल किस फिल्म में किया है?
3: रॉक ऑन।
0: ओके, रॉक ऑन का कौन सा हीरो भाग मिल्खा भाग में भी है?
3: ये फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर की फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन है?
3: जिंदगी ना मिले दोबारा।
0: ग्रेट। ZNMD में लैला का रोल किसने किया है?
3: कटरीना कैफ।
0: कटरीना किस फिल्म में पॉलिटिशियन बनी है?
3: राजनीति।
0: राजनीति का कौन सा हीरो कटरीना का एक्स भी रह चुका है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने कौन सी बायोपिक की है?
3: संजू ही तो है।
0: हाँ, संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनता है?
3: दोस्त बनता है वो गुज्जू, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है।
0: चलिए कोई बात नहीं, इतना अच्छा जो अभी तक खेला है आपने उसके मद्देनजर आपको ये टैग तो देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो चलो भाई, आज के एपिसोड में रिंकू जी एक मिर्ची फिल्मची तो बन चुकी हैं हमारी, बाकी इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजिए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: लमची फिल्मची
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: So if you are new to the show, let me tell you, मैं रोज ये गेम खेलती हूँ जिसके थ्रू आई फाइंड a मिर्ची फिल्म जी। बेसिकली देर आर अ सीरीज ऑफ questions फ्रॉम बॉलीवुड जिनका आंसर अगर आपने सही सही दिया तो ये टैग आपको मिल जाता है। सो आज ये गेम हमने शुरू किया था रिंकू जी के साथ, जो एक पॉइंट पे अटक गया, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए अब हमारे साथ है मीनाक्षी जी। क्या आप रेडी है?
3: हाँ जी।
0: ओके, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि फिल्म संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनते हैं?
3: विकी कौशल
0: किस फिल्म में पाकिस्तानी मेजर का रोल प्ले करते हैं?
3: राजी
0: में सहमत का रोल किसने प्ले किया है?
3: ये आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट टीवी एंकर किस फिल्म में बनती हैं?
3: रॉकी और रानी
0: में जिम फ्रीक कौन है?
3: रणवीर सिंह
0: ब्रेड पकौड़े की कसम किस फिल्म में खाते हैं?
3: शादी मुबारक।
0: तो आप बोल सही रही हैं, उनका ये कंपनी का नाम होता है भले ही, लेकिन मूवी का नाम कुछ और है।
3: बैंड बाजा बारात
0: में जिसके साथ व्यापार उसके साथ कभी ना करो प्यार, ये डायलॉग कौन बोलता है?
3: अनुष्का शर्मा।
0: ग्रेट। अनुष्का शर्मा कुश्ती किस फिल्म में करती हैं?
3: सुल्तान।
0: वाओ। सुल्तान में सलमान खान का कोच कौन बना है?
3: रणदीप हुडा।
0: आलिया को किस फिल्म में किडनैप करते हैं?
3: रणदीप हुडा हाईवे।
0: क्या बात है। तो इसी के साथ आज हमारी दूसरी मिर्ची फिल्म ची बनी है मिस मीनाक्षी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: सो वरी नॉट माई फ्रेंड, अगर आज ये गेम मिस हो गया देन कल एक बार फिर से मौका मिलेगा। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना है एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोना बी टेकन केयर बाय मी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बड़े बुजुर्गों ने कहा है, देर आए दुरुस्त आए।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून नुआ बाबू मोशाए। और हिंदी सिनेमा को लेकर भी मेरा कुछ ऐसा ही अप्रोच है, मतलब बहुत सारी फिल्में, अच्छी फिल्में फॉर दैट मैटर, जिस वक्त रिलीज होती हैं उस वक्त जरूरी नहीं कि आप उन फिल्मों को देख ही पाओ। सो रिसेंटली मैंने लिपस्टिक अंडर माई बुरखा देखी, जिसके बाद रियलाइज हुआ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतनी अच्छी फिल्म मैंने देख तो ली। और इसीलिए मैंने सोचा आज अपने पांच का पंच की लिस्ट में कुछ ऐसी ही फिल्मों को डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये मूवीज जो है हमारे यहाँ बैन हो गई थी जब रिलीज होने वाली थी तब, जिसमें सबसे पहले वील टॉक अबाउट अनफ्रीडम, नंबर दो पे हम परजानिया की बात करेंगे, नंबर तीन पे वाटर, नंबर चार पे सिंस एंड नंबर पांच पे ऑफकोर्स लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। सो टू बिगिन विद नंबर वन पे अनफ्रीडम की बात कर लेते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया अमित कुमार ने, ये 2014 में रिलीज हुई थी एंड द मूवी एक्सप्लोर्स अ लेस्बियन रिलेशनशिप। वो
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है। किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं। चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: खटखट,
2: कौन है?
1: दवे।
2: दवे कौन?
1: द वे यू लव मी। आई हाय मर जावा।
2: खटखट, हू दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। Congratulations and celebrations to the much loved pair, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की है by sharing the news on their social media with a heartwarming pic of baby booties. Last वो जब पेरेंट्स बने थे, it was 2024, अब दो साल बाद एक बार फिर से वो सेकंड बेबी के साथ ब्लेस होने वाले हैं, and I'm really really happy for this. The One का मोस्ट लव्ड सॉन्ग छठी मैया अगर आपने मिस कर दिया तो ब्रो, विशाल मिश्रा की आवाज के बाद अब ये फीमेल वोकल्स में भी आ चुका है, जहां पलक मुच्छाल ने इस गाने में अपनी आवाज दी है. माइंड यू, द वन में सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया लीड रोल्स निभाते नजर आए थे, एंड भाई साहब, बीइंग अ बिहारी, छठी मैया से जो हमारा कनेक्शन होता है उसका तो कोई मोल भाव ही नहीं है. विपुल अमृतलाल शाह की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक एक्सटेंसिव लाइनअप करके रखा है फॉर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस फिल्म्स एंड ओटीटी. सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, उन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं, विच इंक्लूड्स 3 फीचर्स एंड 2 वेब सीरीज. फीचर फिल्म्स की बात करें तो उसमें से एक फिल्म कन्फर्म हो चुकी है विद द नेम समुक, और उसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभाते नजर आएंगे. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेनिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.
1: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Are whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who there?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: एक ऐसी फिल्म जिसका हर लीड कैरेक्टर नेगेटिव था। जरा जरा टच मी, आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं किया देन लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ अब्बास मस्तान डायरेक्टोरियल फिल्म रेस बाबू मोशाय, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर, बिपाशा बासु, कटरीना कैफ और समीरा रेड्डी जैसे एक्टर्स थे। सो यस, इस फिल्म के जितने भी लीड कैरेक्टर्स आपको नजर आए हैं वो सारे नेगेटिव शेड के हैं, मतलब कोई एक मेन विलन नहीं था, सारे कहीं ना कहीं विलन का किरदार निभा रहे थे। इनफैक्ट अनिल कपूर ने पहली बार अपने करियर में अब्बास मस्तान के साथ काम किया था, और तो और फिल्म का एक एपिक नंबर ख्वाब देखे झूठे मूठे, ये गाना फिल्म के साउंडट्रैक के रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। इन शॉर्ट ये गाना फिल्म को अलंकृत करने के लिए बनाया गया था। आई मीन उस बेसिस पे थोड़ा और लोग देखेंगे या फिर इंट्रीग होंगे अबाउट द मूवी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका

0: एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
0: नहीं
1: है?
0: नहीं वही मैं, जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
0: नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ आप, चाहिए हाँ, पास तो।
0: नहीं नहीं आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ, तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना।
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
0: राजी, एक कॉपी नहीं आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
0: हाँ उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कॉन्टेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
0: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: खट खट
4: कौन है?
3: अज्जू।
4: अज्जू कौन?
3: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए होए।
4: खट खट हो दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट।

मिक्स। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: भाई ये वाली ऑडेसिटी मुझे मिल जाती तो मजे ही आ जाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिसाइड कर रही हूँ सब्सक्रिप्शंस रखने वाले लोगों की कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो हर ओटीटी का अपना पर्सनल सब्सक्रिप्शन रखते हैं। मतलब इनको कोई सीरीज या मूवी देखनी है तो उस हिसाब से जिस भी ओटीटी पे अवेलेबल है वो चीज, वो उस ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अपनी आईडी पे लेते हैं, अपने नंबर पे लेते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी दे ही देते हैं यार। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है ना, दीज आर पैरासाइट्स भाई। जिस टाइम से, जिस जमाने से ओटीटी की शुरुआत हुई है, उस टाइम से ही इस इंसान ने कसम खा रखी है कि मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की आईडीज पे ही सरवाइव करूंगा। इन शॉर्ट, हमारे जैसे लोगों की जिंदगी चलती है नो कॉस्ट ईएमआई पे और इनकी नो कॉस्ट एंटरटेनमेंट पे। तभी मैंने कहा इनकी ऑडेसिटी अगर हमारे जैसे लोगों को भी मिल जाती ना तो हमारा जीवन भी बड़ा सफल सा हो जाता। व्हाट डू यू से? मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: यार अक्टूबर का मतलब सिर्फ फेस्टिव सीजन, ठंडी हवा और घर से बाहर निकलने का एक्सक्यूज नहीं है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Because to all the cinema lovers, भाई हमारे लिए तो अक्टूबर काफी एक्साइटिंग होने वाला है। So थिएटर्स में इस महीने सिनेमा के अलग अलग जॉनरा का फुल प्लेटर मिलने वाला है। 16th ऑफ अक्टूबर को नई नवेली आ रही है, यामी गौतम के साथ एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा, मतलब रियलिटी से थोड़ा ब्रेक लेकर इमेजिनेशन की दुनिया में जाने का परफेक्ट चांस। प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी भी थिएटर्स में होगी, जहां एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी को सिनेमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बेसिकली 26/11 का आफ्टर मैथ दिखाया जाएगा यहाँ पे। फिर 23rd ऑफ अक्टूबर को रिलीज का प्रॉपर ट्रैफिक जैम लगने वाला है, जहां एक तरफ मैं ना रहा तेरा स्टारिंग अध्ययन सुमन और दिविता राय के साथ रोमांटिक ड्रामा रिलीज होगी, वहीं दूसरी तरफ पहला प्यार दूसरी बार भी इसी दिन रिलीज होगी, जहां रोमांस के साथ सेकंड चांसेस वाली कहानी दिखाई जाएगी। थर्ड ऑन दिस लिस्ट इज तू है मेरी किरण, जो एक सुपरनैचुरल रोमांटिक थ्रिलर है स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा एंड हर हस्बैंड जहीर इकबाल। वहीं फोर्थ ऑन द लिस्ट इज उड़ता तीर, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये इंडिया का पहला पैटकॉम यानी पेट्रियोटिक कॉमेडी है, जिसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, विजेंद्र काला, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस और राम कपूर जैसे अल्टीमेट एक्टर्स नजर आएंगे। मतलब अगर आपको रोमांस चाहिए, थ्रिलर चाहिए, कॉमेडी चाहिए या इंटेंस स्टोरी, अक्टूबर में हिंदी सिनेमा आपको कई ऑप्शंस दे रहा है। लेकिन अगर आप थिएटर पर्सन नहीं है और वीकेंड का प्लान है घर पे बैठ के कुछ सॉलिड देखने का, तो OTT भी रेडी है बाबू मोशाय। सो 9th ऑफ अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है रिपोर्टिंग लाइव, जिसमें परिणीति चोपड़ा, देवेन भुजानी, अमोल पालेकर और आदिल हुसैन है। सो बेसिकली हम मूवी बफ्स के लिए अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का सीन सिंपल है। फ्राइडे को थिएटर्स जाओ तो नई कहानी, घर पे रहो तो OTT पे नया सस्पेंस। बस चॉइस आपकी है, पॉपकॉर्न थिएटर का हो या सोफे वाला। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा साजी लो।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
9: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
10: बार बार।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: दूसरों की जिंदगी में डिटेक्टिवगिरी करने से अच्छा है कि फिल्मी डिटेक्टिव बन जाओ।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे ना इस गेम में मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देती हूँ जिसके जरिए आपको फिल्म का नाम गेस करना होता है, तभी आप बन पाते हैं फिल्मी डिटेक्टिव। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं शालिनी जी फ्रॉम मोहाली। तो तैयार है मैम?
2: लेट मी ट्राई।
0: ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट आपके लिए है राजा कलिंगा वॉर बुद्धिज्म।
2: इज इट अशोका?
0: अब बिल्कुल सही पकड़े हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इज डिसलेक्सिया बोर्डिंग स्कूल टीचर पेंटिंग।
2: तारे जमीन पर।
0: यस इट इज। अगला है मायामी फ्रेंडशिप फ्लैटमेट्स।
2: दोस्ताना।
0: यस इट इज। ओके, पुरानी दिल्ली काला बंदर कम्युनिटी आइडेंटिटी।
2: दिल्ली से।
0: यस इट इज। आपका अगला प्रॉम्प्ट मॉडल्स एंबिशन फेम डाउनफॉल।
2: ओके, फैशन ओनली।
0: ओके, अगला प्रॉम्प्ट है विलेज ऑस्ट्रेलिया गैंगस्टर लक।
2: सिंगिस किंग।
0: यस इट इज। प्रॉपर्टी फैमिली फ्रॉड रिवेंज।
2: घोसला का घोसला।
0: सही जवाब। ओके, नेक्स्ट ट्रेजर गोवा बड़ा वाला डब्ल्यू एंड फ्रेंड्स।
2: ओके धमाल।
0: ओके, द नेक्स्ट वन इज ओशन ट्रेजर फ्रेंडशिप डाइविंग।
2: इज इट ब्लू?
0: यस इट इज। ओके, दिस इज द लास्ट वन। मुंबई फ्लड्स एक्सेस रीयूनियन।
2: तुम मिले।
0: तो इसी के साथ शालिनी जी बनी है आज हमारे शो की
1: फिल्मी डिटेक्टिव।
0: वैसे ये डिटेक्टिव गिरी कल वापस हाजिर होगी। राइट हिट ऑन मिर्ची। ऑल यू नीड टू डू इज मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम कर दो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
3: चार फिल्में, उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी, मे एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल्ड ऑल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ऑल,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खटखट,
6: भट्ट
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
6: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खटखट, हू दैट,
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: लगवा लोगे अगर इन्फ्लुएंजा की सुई तो कोई भी फ्लू कोल्ड वेदर तुमको ना छुई। हाँ वो बात अलग है कि सुई लगाने के बाद थोड़ा सा उई उई करोगे आप। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आ गया। देवी और सज्जनों बता दें मौसम बदलने वाला है और इस बात को ध्यान रखते हुए हमारा ख्याल रखने वाला मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ साफ कह रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ नेशनल सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड अवेयरनेस कैंपेन जो कि मार्च 2027 तक चलेगा। हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन एज वेल एज पब्लिक सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज कहीं भी आप ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हो। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे खास बात उनके लिए जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको। एज 50 से अगर थोड़ी ज्यादा है ये भी आप ले सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन एज 6 months to 5 years इनको, और ये सब इसीलिए टारगेट बनते हैं क्योंकि मौसम का सबसे पहला असर ऐसे ही नो एज ग्रुप पर आता है। तो इसलिए हमें बताया जा रहा है प्लीज अगर आपको भी ऐसा छोटा वाला छुई मुई वाला मामला बन जाता है कि जरा सा मौसम बदला आप तुरंत बुखार के शिकार बन जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ने आप सबसे कहा है कि आप ये वैक्सीन जरूर रिसीव कीजिए एज ये आपके पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनी है एंड इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। शुरुआत ही कर दी है मैंने इतनी अच्छी बात से, तो जाइए सुई लगवाइए, थोड़ा उई उई करिए, लेकिन याद रखिए लगवाओगे इन्फ्लुएंजा की सुई तो कोई भी तुमको किसी तरह का कोल्ड फ्लू ना छुई। 89.6 मिर्ची वन शाम शानदार की शुरुआत, मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट?
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो ना, वहीं आके
3: बजाऊंगा. आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए.
2: सबको लगा दूंगा लाइन में
3: सर. मैं स्टेटमेंट निकाल

0: ये बॉस बॉस को बाद में लाइन में लगाई गई, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे, 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
0: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
2: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है, 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
0: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है, नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
3: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Jassi.
6: Jassi? Kaun si wali Jassi?
5: Jassi who has come, auntie ji?
6: Cut, cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची वन पर गुलाबी साड़ी गाना खत्म और आपके साथ आ गया
1: मस्त मौला गौरव।
0: यार कल ना हमारी बिल्डिंग के नीचे वाला डोर ना ऐसे कर रहा था, मैंने कहा क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने वहां पे एक स्प्रे मारा एंड जैसे ही उसमें थोड़ा सा यू नो ऑयल चीज पड़ी वो एकदम टनाटन साउंड करने लगा, सारा साउंड खत्म हो गया। तो कभी कभी जिंदगी में ना कुछ चीजों को टाइम टाइम पर ओवरहॉलिंग चाहिए होती है, टाइम टाइम पर उनकी देखरेख करनी होती है, और ऐसा ही आपकी गाड़ी के साथ भी होता है। और हम जब गाड़ी के साथ ऐसा कुछ होता है तो घबरा जाते, कहते अरे यार ये पार्ट बदलना पड़ेगा, अब ये तो महंगा आएगा। लेकिन मैं कहता हूं मैं आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा जहां पर आपको क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, ट्रस्टेड ब्रांड मिलेंगे एंड अनबीटेबल वैल्यू मिलेगी। यस, और अगर आपको गाड़ी के ट्रस्टेड यू नो पार्ट्स चाहिए तो ये आपको मिलने वाले हैं यूनिक पार्ट्स में, जहां पर आपको मिलेगा सारा का सारा गाड़ी का ऑटोमोटिव पार्ट्स। एंड बड़ी बात ये है ये सारी बेस्ट क्वालिटी के होंगे एंड उससे भी अच्छा पॉकेट फ्रेंडली, मतलब गाड़ी की समय समय पर जब भी आपको रिपेयरिंग करानी है, जब बात पार्ट्स की आए और पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए बजट रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप यूनिक पार्ट्स को चूज करें जहां पर ढेर सारे अलग अलग ब्रांड्स एट अनबीटेबल वैल्यू आपको मिल जाते हैं। आप देखिए ऐसी चीजों का सोल्यूशन मस्त मौला गौरव के पास रहता है। तो अगर आपकी गाड़ी स्लो मोशन में चल रही है, आपको लग रहा है रिपेयरिंग इज रिक्वायर्ड, तो यूनिक पार्ट्स है। बाकी पार्ट्स के लिए 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: अरिजीत सिंह, आपकी आवाज दिल गार्डन गार्डन कर जाती है मेरे भाई। एंड जब मस्त मौला गौरव आपके साथ है तो आपको पता है कि शो चल रहा है
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: एंड ऐसे में मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहेगा कि देखिए, हमारी जिंदगी में ना सुकून की एक बात ये होती है कि हमने कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है, और जब बात सुकून से अच्छे इंटरेस्ट की आए तो गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाता ही है।
1: गोल्ड अपडेट।
0: यस, हम अगर बात करें तो अल्फरदान एक्सचेंज के गोल्ड अपडेट्स यानी कि पैम्प, जो कि आपको स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी देता है, वो पैम्प के 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आज आपको मिलेंगे 560 कतारी रियाल में। पैम्प का 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2620 कतारी रियाल। पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 5170 कतारी रियाल। पैम्प का 1 औंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 15978 कतारी रियाल। एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार 59300 रेट। एंड बस इतना ही कह दूंगा, 59308 कतारी रियाल में आप 10 तोला गोल्ड बार जब लेते हो तो आपको यह पता है कि आने वाले टाइम में ये 100,000 भी हो सकता है दोस्त। सो इन्वेस्ट वेरी स्मार्टली, वाइजली एंड स्पेशली विद द बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। एंड कतर में पैम्प के एजेंट हैं हमारे अल्फरदान एक्सचेंज, जहां आपको ये पैम्प 24 कैरेट स्विस सर्टिफाइड गोल्ड मिलते हैं 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Alphardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
3: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था.
2: जो दोनों.
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: Hi, this is Anuradha Podwal.
5: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला.
6: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
5: भूल से पर्दा कीजिए.
7: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
8: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
9: तो सिर्फ चोरे करें.
10: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
11: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: ये गाना चकाचक है लेकिन मौसम कब चकाचक होगा?
1: मस्त मौला गौरव।
0: हाँ भाई, सूरज चाचू तो मानने को तैयार नहीं है। अक्टूबर की अब 10वीं तारीख के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन सूरज चाचू अपनी तपन को बरकरार रखे हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: आज एक बार फिर से एक्सेसिव हीट थी भैया, जबरदस्त वाली गर्मी, 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान। ये सूरज चाचू का कोई दोस्त नहीं है क्या जो उनको वीकेंड पे कह दे आओ यार बारबेक्यू लेके चले, पार्टी करा दे तुमको बीच पे। सूरज चाचू, आज अगर आपने दोस्ती की होती ना तो आप हमें इतना तपा ना रहे होते। वैसे वीकेंड पे मौसम शायद नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं, लेकिन वो भी 40 डिग्री के आसपास रहेंगे। मैंने कहा है कि जल्द ही दोस्तों दिन बदलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं पिछले दिन से, यानी कि कल से आज में 2 डिग्री और बढ़ गया भाई। वैसे बात करें 11 किलोमीटर से भी कम रफ्तार से हवाएं चलनी है। ह्यूमिडिटी का प्रकोप थोड़ा सा शाम को झेलेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना पिछले दिनों। तो मतलब कुल मिला के मौसम अच्छा होने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट का मौसम मिर्ची पर 24 घंटे सातों दिन 365 दिन चलता है। इट्स हॉट।
4: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: ऐसे ही पुराना रिश्ता हम भी निकालते हैं जब अपने दोस्तों से उधार मांगते हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: भाई देखिए, हर जगह इमोशनल कार्ड तो खेलना ही पड़ता है, तभी तो दोस्त कहते हैं अच्छा ठीक है इस महीने ले ले, अगले महीने दे देना। फिर वो अगला महीना 4-5 महीने बाद ही आता है, ये आपको पता है। अब दोस्तों की आदत ऐसी हो तो क्या ही कर सकते, लेकिन फिलहाल हम आपके अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है 20 तारीख के बाद हम आपको भी पकड़ लें और कह दें कुछ दे दो, और अगर नहीं देना चाहते तो जल्दी जल्दी घर भेजो, क्योंकि रेट हम बताएंगे आई पे पे। आई पे जहां आप पर्सन टू पर्सन को अगर पैसे ट्रांसफर करते हो कतरी रियाल में, तो आपको सबसे कम चार्जेस देने पड़ते हैं कतर में, वो है आई पे ऐप। एंड फिलहाल के लिए एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज आज आपको मिल रहे हैं 26.51 रुपए। यस, 26.51 INR। इसके बाद एक कतरी रियाल के बदले लंकन रुपीज 90.85। वहीं अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.15 पाकिस्तानी रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट 42.40 का रेट छाई नहीं, हाँ जी हजूर 42.40 को नेपाली रुपीज का रेट छाई। अगर घर भेजने लगे तो सही टाइम छो। अगर बंधु इसके बाद बांग्लादेशी टाका की बात करेगा दादा, एक्टर कतरी रियाल के बदले 33.77, तो हाँ जी बाड़ी ते पाड़ी दो 33.77 एक्टर रेट छिलो तो बांग्लादेशी टाका। तो मस्त मौला गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची 1 पर, ये हॉट है।

0: Dibang is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स

0: मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, आई एम प्रोफेसर। मेरी बात सुनिए यार, आप हेलो। वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
0: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Hi, this is Anuradha Podwal.
4: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
5: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
6: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369 and event by Rami Productions International.
7: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
8: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
9: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
10: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
11: कैसे रुक सकता है?
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अगर लगाओगे इन्फ्लुएंजा की सुई तो कोई भी इन्फेक्शन तुमको ना छुई। आपके साथ देवी और सजनों, मौसम बदलने वाला है, इसको ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ नेशनल सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। यस, ये मार्च 2027 तक चलाया जाएगा एंड हम आपको बता दें, इन कोलेबोरेशन विद हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन एज वेल एज पब्लिक सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज कतर में ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेकर आ गए। ये बेसिकली हमारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए होता है क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है, ऐसे में लोग और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एज 50 एंड उसके ज्यादा एज वाले। यस, साथ में जो 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर वो जो क्रॉनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, अस्थमा या उसके पेशेंट है, उन सबको तो ये जरूर लगवानी चाहिए एंड ये बिल्कुल सेफ होती है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड दिस यू कैन गेट इट फ्री ऑफ चार्ज एट PHCC centers, HMC health facilities and more than 50 other private healthcare facilities. पूरे कतर में ये आपके लिए सुविधा बनाई गई है ताकि आप किसी भी तरह के वेदर से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचे रहें। थैंक यू टू MOPH एंड हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन एंड अदर institutions ऑफ हेल्थ केयर एंड कतर। सच में जब आप इस तरह से हमारी केयर करते हो तो हमें यही लगता है यार कि हम घर से बिल्कुल दूर नहीं है, हमारा कोई ख्याल रखने वाला हर दम हमारे साथ है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
9: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
10: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स।
11: जबरदस्त ट्रैक्स
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: फर्राटे कार में भरते हुए शाहरुख खान यूएस की सड़कों पर इस गाने में नजर आए थे। ये गाना किसने सुनाया? मस्त मौला गौरव। और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार, जो लेकर आते हैं
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी जिंदगी में कुछ खर्चे अचानक से आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप आज नॉर्मली बैठे थे, आपको याद आया भैया हमारी गाड़ी का फिर से फाइज कराने की बारी आ गई है, और फाइज कराते ही हमें गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस कराना है। और ऐसे में आप सोचते हो यार बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली वाला हमको मोटर इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा। तो मैं दे रहा हूँ ना सोल्यूशन, बीमा है ना आपके साथ। यस, बीमा जो हमारे कतर में देते हैं आपको मोटर इंश्योरेंस एट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ कतरी रियाल 400। और इसके अलावा बीमा आपको देते हैं 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, चाहे वो टोइंग हो, फ्लैट टायर हेल्प हो, बैटरी का जंप स्टार्ट हो, या फिर लॉकआउट असिस्टेंस, ये सब कुछ मिल जाता है आपको बीमा के मोटर इंश्योरेंस के साथ। एंड इसके अलावा यहां पर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी दिया जाता है, साथ ही साथ 7% तक का कैशबैक भी आप पा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा बीमा के नंबर पर 8000786, आई रिपीट 8000786, या फिर beamaonline.com, जहां जाकर आप अपने लिए सारी चीजें वाइजली चुन सकते हो। एंड ऐसे फायदे की बातें मस्त मौला गौरव बताता है, तो कभी हमको ट्रीट देने का मन करे तो आ जा यार मिर्ची के स्टूडियोस, 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर, आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry, bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: खट खट,
8: कौन है?
7: इशांत.
8: इशांत कौन?
7: इशांत गदाधारी भीम. इशांत
8: खट खट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: और यार ऐसे गानों पर हमारा दिल भी धड़कता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं है, ये हमारे लिए इमोशन है यार। चाहे पापा मम्मी के साथ बैठकर कभी अंताक्षरी खेली हो या फिर अपने 90s को जाकर रिवाइंड किया हो, ये गाने हमारे दिल के सबसे करीब हैं। और खुद अनुराधा पौडवाल जी जब इसे हमारे कतर में हमारे सामने गा रही होंगी तो सोचिए हमारे दिल का क्या होने वाला है। यस, बात कर रहा हूं मैं उस मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट की जो हमारे कतर में लेकर आ रहा है रैमी प्रोडक्शन इंटरनेशनल। इस 30th of October एस्पायर जोन लेडीज हॉल में होने जा रहा है ये मेगा कॉन्सर्ट, जहां होंगे अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड जूनियर कुमार सानू। यस, ये सब के सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे एंड हमारे 90s को रिवाइंड कर देंगे। तो किस बात का इंतजार करो, अपनी टिकट्स बुक कर लो, चाहे प्लेटिनम लिस्ट पर जाकर या फिर वर्जिन पर जाकर, क्यू टिकट्स एंड एस सिटी सुनू सब जगह ये टिकट्स अवेलेबल हैं। एंड रिमेंबर, ये वो शाम होगी जो हमें हमारे इमोशंस के साथ जोड़ देगी उन पुराने दिनों से जो शायद अब हम ढूंढते। इस उम्मीद में कि आप अपनी टिकट्स बुक करा रहे हो और इस मेगा कॉन्सर्ट का हिस्सा बन रहे हो, जहां अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड जूनियर कुमार सानू आ रहे हैं मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा सैटरडे की शाम शानदार में ऐसी बातें लेकर। यस, ढेर सारा मस्ती फन धमाल फिर से करेंगे शाम शानदार में। तब तक ले अभी भी मस्त सलामा मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। इश्क

0: वीकेंड का मूड ऑन है, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर और पार्टी का वॉल्यूम ऑलरेडी फुल। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची और योंतिका, जहां म्यूजिक रुकता नहीं, एनर्जी थकती नहीं और हर बीट के साथ सेलिब्रेशन थोड़ा और लाउड हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस पार्टी, हियर वी गो।
1: आंधी बन के आ

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि यह मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।

0: Mirchi Morga na Vetke Saat. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, pagak.
2: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. Let's hear it from them.
3: It was the best. I liked the magic show.
4: Magic show and you?
3: It was very nice.
4: You liked it?
3: Yes.
4: We should come again?
3: Yes.
4: What's your name?
3: Aira.
4: And yours?
3: Anrita.
4: What was the best?
3: The magic show.
5: This recharge is so cool. Better than anything else.
6: Mirchi recharge.
7: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
2: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
8: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
9: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
2: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
10: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
11: It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
12: Our business is our business. None of your business.
13: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट.
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
15: 89.6
16: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और ऑन द गा फेस्टिव सीजन का स्पार्कल वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
2: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
1: Powered by iPay Wallet.
3: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
4: Let's do that.
1: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
5: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
6: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
7: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
8: Baladna.
7: Taste that Qatar loves.
1: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
9: Mirchi Murga, driven by Carmel Group. Premium transportation, heavy duty strength ke saath. Discover karo versatile Shockman heavy duty trucks aur Ankai buses. Superior commercial vehicles abhi Carmel Group par available hain.
10: It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
11: कट कट
12: अबे कौन है
11: उत्तपा
12: उत्तपा कौन
11: उत्तपा मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था आया क्या
12: खट खट हू दैट
13: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट यू नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
3: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
2: Only on Mirchi It's hot.
5: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
6: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
7: Mere bete aayenge. Mere Karan Arjun aayenge.
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
2: कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कॉन्टेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को।

0: अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप इसलिए।
1: कुकड़ों को
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Looking to grow your business, expand your network, and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL, Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 55099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow. फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो। It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा, दोनों
2: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।
9: On a ride.
10: Club Mirchi.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
2: Dosti kai ko sule, madam. No sorry, no thank you.
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
5: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। फेस्टिव सीजन का स्पार्कल, वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे। स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी।

मुकाबला डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका का विद क्लब मिर्ची बेबी। नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची लेट्स गो।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. Nakhir wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please? मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
3: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: खट खट.
5: Who that?
4: जाहिर.
5: जाहिर. जाहिर हूँ.
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं.
5: खट खट. Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
6: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
2: खट खट.
3: कौन है?
2: स्टेन.
3: स्टेन कौन?
2: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को. मैं नहीं देता पैसे, जाओ.
4: खट खट. हू दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. मिर्ची, इट्स हॉट.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
5: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था.
4: दोनों.
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM
11: मिर्ची 1.
12: It's hot.
13: Ladies and gentlemen.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: वीकेंड का मूड ऑन है, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर और पार्टी का वॉल्यूम ऑलरेडी फुल। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची और योंतिका, जहां म्यूजिक रुकता नहीं, एनर्जी थकती नहीं और हर बीट के साथ सेलिब्रेशन थोड़ा और लाउड हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस पार्टी, हियर वी गो।
1: आंधी बन के आया हूं, निजाना निजाना।

0: 1,43,000।
1: हाँ
0: वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
0: आपने नहीं किया है?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
0: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
0: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
0: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
0: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
0: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता
1: ठीक बोल रहे ना, वहीं जाके बजाऊंगा।
0: आप मुझ पे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए।
1: सबको लगा दूंगा लाइन में
0: सर। मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
0: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
2: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
0: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द का फेस्टिव सीजन का स्पार्कल वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
3: उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोलडाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शो को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए?
3: हाँ, नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये मुझे भी भेजना
3: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू देयर?
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट, हू देयर?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: cho, sin darle me en el camino. Oh.
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
3: खटखट,
4: कौन है?
3: दवे.
4: दवे कौन?
3: द वे यू लव मी. आई हाय मर जावा.
4: खटखट, हु दैट?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
6: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
4: I don't have to mouth those.
5: Sorry bro, sorry.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित्स विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनरा. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
3: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
6: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। फेस्टिव सीजन का स्पार्कल, वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे। स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी।

मुकाबला डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन टिका का विद क्लब मिर्ची या बेबी नो नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची लेट्स गो

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: हिट गाने।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
5: 89.6 FM, Mirchi One. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go.
7: On a ride.
8: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: खट खट अकबर
1: अकबर हु?
2: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
1: खट खट हू दैट
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।